हाँ हो रा जामरो माटो माथी बाल्दाई मन को बाती डल्ला फरकाई फरकाई ढाड़ा मरकाई मरकाई।